0: रिश्तों की मिठास विश्वास की दूर
1: और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो डीएस 89.6 एवं डीएस साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
0: डीएस संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: डीएस डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
0: एमडी श्री अवधेश शर्मा जी,
2: प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
1: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
2: रेडियो डीएस आर शिकेश मीणा जी की ओर से
1: आप सभी को प्रेम भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
0: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है। भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
1: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है। तो आइए इस रक्षा बंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
0: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो।
1: और हाँ, आशी मीणा पलक शर्मा के साथ आप सुनते रहिए रेडियो डीएस।

0: रिश्तों की मिठास
1: विश्वास की दूर
0: और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो डीएस 89.6 एवं डीएस साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
1: डीएस संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: डीएस डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
1: एमडी श्री अवधेश शर्मा जी,
2: प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
0: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
2: रेडियो डीएस आर्षिकेश मीणा जी की ओर से
0: आप सभी को प्रेम भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
1: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है। भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
0: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
1: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो।
0: और हाँ, आशी मीणा पलक शर्मा के साथ आप सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6 पर। आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज। रेडियो डीएस 89.6 मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर की आवाज।
1: आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: रिश्तों की मिठास
1: विश्वास की डोर
0: और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो डीएस 89.6 एवं डीएस साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
1: डीएस संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: डीएस डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
1: एमडी श्री अवधेश शर्मा जी,
2: प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
0: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
2: रेडियो डीएस आर शिकेश मीणा जी की ओर से
0: आप सभी को प्रेम भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
1: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है। भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
0: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
1: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो।
0: और हाँ, आशी मीणा पलक शर्मा के साथ आप सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6 पर। आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज। रेडियो डीएस 89.6 मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर की आवाज।
1: आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।

0: रिश्तों की मिठास
1: विश्वास की दूर
0: और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो डीएस 89.6 एवं डीएस साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
1: डीएस संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: डीएस डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
1: एमडी श्री अवधेश शर्मा जी,
2: प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
0: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
2: रेडियो डीएस आर्षिकेश मीणा जी की ओर से
0: आप सभी को प्रेम भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
1: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है। भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
0: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
1: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो।
0: और हाँ, आशी मीणा पलक शर्मा के साथ आप सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6 पर। आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज। रेडियो डीएस 89.6 मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर की आवाज।
1: आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है

0: 89.6 पे सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे।
3: रिश्तों की मिठास,
4: विश्वास की दूर
3: और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो DS 89.6 एवं DS साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
4: DS संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
3: DS डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
4: MD श्री अवधेश शर्मा जी, प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
3: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
4: रेडियो DS आर्षिकेश मीणा जी की ओर से
3: आप सभी को प्रेम भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
4: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है, भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
3: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है, तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
4: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो।
3: और हाँ, आशी मीणा पलक शर्मा के साथ आप सुनते रहिए रेडियो DS 89.6 पर। आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज, रेडियो DS 89.6 मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर की आवाज।
4: आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।

गुड मॉर्निंग सुप्रभातम नमस्कार सत श्री अकाल गंगापुर सिटी में आपका रेडियो दोस्त रेसे मिना। दोस्तों आज सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक और अनंत शुभकामनाएं डीएस रेडियो और डीएस परिवार की ओर से। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं, थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मन पसंद फेवरेट कार्यक्रम हल्लू फरमाइश। कीजिए थोड़ा सा इंतजार। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 30 डिग्री के सेल्सियस के साथ साथ आप आनंद लेंगे आपके मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश का।

0: रिश्तों की मिठास
1: विश्वास की दूर
0: और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो डीएस 89.6 एवं डीएस साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
1: डीएस संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: डीएस डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
1: एमडी श्री अवधेश शर्मा जी,
2: प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
0: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
2: रेडियो डीएस आर्षिकेश मीणा जी की ओर से
0: आप सभी को प्रेम भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
1: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है। भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
0: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है। तो आइए इस रक्षा बंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
1: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो।
0: और हाँ, आशी मीणा पलक शर्मा के साथ आप सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6 पर। आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज। रेडियो डीएस 89.6 मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर की आवाज।
1: आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।

0: हेलो
1: नमस्ते जी
0: सर। नमस्कार, नाम बताएं आप।
1: हाँ हाँ भाई, जम्मू सैन्य कॉलोनी से केशव शर्मा और सुषमा रानी। तो सबसे पहले हम आपको आज रखड़ पुण्या पे मुबारकबाद देते हैं। सभी भाई बहनों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: आपको भी, आपको परिवार एवं सभी रेडियो
1: तो सर जी, आज हमें आप अंधा कानून फिल्म का गाना सुना दीजिए, लता मंगेशकर की आवाज में, जो रक्षाबंधन के ऊपर आधारित है, चंदा रे अपने भैया से कहना।
0: बिल्कुल सुना रहे सर आपको, आपकी फरमाइश से
1: बैठ। थैंक यू।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
3: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
3: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: रिश्तों की मिठास,
2: विश्वास की डोर
1: और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो डीएस 89.6 एवं डीएस साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
2: डीएस संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: डीएस डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
2: एमडी श्री अवधेश शर्मा जी,
3: प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
1: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
3: रेडियो डीएस आरशिकेश मीणा जी की ओर से
1: आप सभी को प्रेम भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
2: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है, भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
1: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है, तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
2: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो।
1: और हाँ, आशी मीणा पलक शर्मा के साथ आप सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6 पर। आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज, रेडियो डीएस 89.6 मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर की आवाज।
2: आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।
4: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
5: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीणा। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
4: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो
1: जी नमस्ते सर।
0: सर नमस्कार, नाम बताएं।
1: हंडीराम गुजर बोल रहा हूँ सर, मदरसा से।
0: हंडीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: सर? गाने के बोले ये बंधन तो प्यार का बंधन है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश।
1: ओके थैंक्स।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हम बताएं सर। हेलो, नाम बताएं सर। नाम अरविंद जी, कहाँ से बात?
1: नसिया कॉलोनी से सर।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश से ही बोल। हेलो हेलो जी, नाम बताएं।
2: राघव शर्मा।
0: राघव जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: उड़ाना वाला जी।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं सर? गाना बताएं। बिल्कुल सुना रहे हैं आपको पंजाबी सॉन्ग। हेलो
1: हेलो सर।
3: बीच में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
4: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
5: रिश्तों की मिठास, विश्वास की डोर और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो DS 89.6 एवं DS साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
6: DS संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
5: DS डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
6: MD श्री अवधेश शर्मा जी, प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
5: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
6: रेडियो DS आर्षिकेश मीणा जी की ओर से
5: आप सभी को प्रेम भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
6: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है, भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
5: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है, तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
6: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो।
5: और हाँ, आशी मीणा पलक शर्मा के साथ आप सुनते रहिए रेडियो DS 89.6 पर। आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज़। रेडियो DS 89.6 मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर की आवाज़।

0: का सरताज है।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम बताएं।
0: मैं ठीक हूँ।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर से।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: बैरन सॉन्ग।
1: बैरन सॉन्ग।

0: हेलो सर, जारा ना पिछला गाना सुनना है। बोले ओ बोले,
1: बोले पहले आपका नाम बताएं।
0: मनोज सक्सेना।
1: मनोज जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: नशिया सोनानी से सर।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश से बोले ओ बोले सॉन्ग रेडियो बेस में कुल क्या बनना।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: नमस्ते सर, चौधरी अर्ज कर रहा हूँ।
0: चौधरी जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना सर सुपर हिट है, भारत की सभी बहनों के लिए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं रेडियो परिवार को,
0: आपको और आपके परिवार मित्रजनों को सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बताएं सर गाना।
1: हाँ सर, गाना है सभी बहनों के लिए, सरप्राइज है, कहते हैं राखी के ये धागे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आप आपकी फरमाइश बताते हैं सर।

0: हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: तुलसीराम मीना, ग्राम तिलिखिला।
0: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे।
1: बहना ओ बहना,
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश करेगा। हेलो

0: हेलो,
1: नाम बताएं आपका?
0: गुलशन।
1: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: जंगलापुर सिटी।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो पे?
0: मेरा कैट वॉक मेरे भाई से।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आप, प्रोवाइड करेगा।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताए सर।
1: सर रोहित नाम है,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से, संजय कॉलोनी।
0: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: रक्षाबंधन का। हेलो,
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पर ही गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6 पे
2: रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: जी नाम बताएं।
1: रवीना।
0: रवीना कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हाँ।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: गाना बताएं मैम।
1: मेरे बैक टू मॉर्निंग आई
0: थी। जी
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर आपका।
1: मेरा नाम कृष्णा है।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो डीएफ से आप?
1: तू कौन से गांव की छोरी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश रहेगा ना।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी। हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे

0: हेलो
1: हेलो
0: सर, नाम बताएं आपका।
1: हाँ भैया, योगेश जांगड़े देने पर छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से।
1: बंधन दिलों के बंधन सुनवा देंगे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। खुल के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: रिश्तों की मिठास
1: विश्वास की डोर
0: और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो डीएस 89.6 एवं डीएस साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
1: डीएस संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: डीएस डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
1: एमडी श्री अवधेश शर्मा जी,
2: प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
0: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
2: रेडियो डीएस आरशिकेश मीणा जी की ओर से
0: आप सभी को प्रेम भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
1: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है। भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
0: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
1: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो।
0: और हाँ, आशी मीणा पलक शर्मा के साथ आप सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6 पर। आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज। रेडियो डीएस 89.6 मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर की आवाज।
1: आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
4: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
6: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
7: दोस्तों, इस वक्त आप मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों, 11:11 का समय हो चुका है। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लो फरमाइश। दोस्तों, कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है सोनू जी की गंगापुर सिटी से। उन्होंने सुनना चाहा है ये रक्षाबंधन पर आधारित गाना।

0: रिश्तों की मिठास
1: विश्वास की दूर
0: और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो डीएस 89.6 एवं डीएस साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
1: डीएस संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: डीएस डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
1: एमडी श्री अवधेश शर्मा जी,
2: प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
0: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
2: रेडियो डीएस आरशिकेश मीणा जी की ओर से
0: आप सभी को प्रेम भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
1: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है। भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
0: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
1: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो।
0: और हाँ, आशी मीणा पलक शर्मा के साथ आप सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6 पर। आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज। रेडियो डीएस 89.6 मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर की आवाज।
1: आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।
3: नाम बताएं सर।
4: प्रियंशु मीना है।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो।
4: हाँ सर।
3: नाम बताएं सर।
4: सर सुरेंद्र।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: गंगापुर सिटी।
3: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
4: दिल दे बैठी छोरे ने।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का गाना।

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: नाम बताएं सर। हाँ जी,
1: दिव्यांश खानपुर बड़ौदा।
0: हाँ सर, बात क्या नाम है?
1: दिव्यांश।
0: अच्छा, बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मलहार सावन।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, दोपहर का एक बज चुका है। दोस्तों इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करके और अगले कार्यक्रम में लेकर चलते हैं आपको आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरवाइस में।
1: से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन,
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस
3: रिश्तों की मिठास,
4: विश्वास की डोर
3: और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो डीएस 89.6 एवं डीएस साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
4: डीएस संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
3: डीएस डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
4: एमडी श्री अवधेश शर्मा जी, प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
3: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
4: रेडियो डीएस आर्षिकेश मीणा जी की ओर से
3: आप सभी को प्रेम भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
4: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है, भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
3: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है, तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
4: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो।
3: और हाँ, आशी मीणा पलक शर्मा के साथ आप सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6 पर। आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज। रेडियो डीएस 89.6 मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर की आवाज।
4: आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।

0: तुम प्लीज इस रिश्ते के लिए मना कर दो। मैंने किसी और से वादा किया है। आई एम सॉरी।
1: ठीक है, पर मुझे बस एक शाम दे दो। फिर भी अगर तुम्हारा फैसला ना बदले तो आई प्रॉमिस मैं इस रिश्ते को मना कर दूंगा।
0: वो तुम समझ नहीं रहे हो।
1: प्लीज एक शाम।
0: अच्छा ठीक है, कल शाम 4 बजे, पर सिर्फ 1 घंटे के लिए।

0: 89.6।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने क्रस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस अकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए डीएस से जुड़कर अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित कीजिए।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: दोस्तों फिलहाल इस वक्त आप मेरे साथ ट्यून इन किया है रेडियो डीएस गंगा बोल सिटी का तड़का पर, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के साथ, अभी आपने सुना राजस्थानी कार्यक्रम। और दोस्तों अब आज हम कार्यक्रम हेलो फरमाइश के लिए समा चाहते हैं, आप सुनेंगे निरंतर लगातार फिल्म संगीत।
1: रिश्तों की मिठास,
2: विश्वास की डोर
1: और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो डीएस 89.6 एवं डीएस साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
2: डीएस संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: डीएस डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
2: एमडी श्री अवधेश शर्मा जी, प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
1: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
2: रेडियो डीएस आर्षिकेश मीना जी की ओर से
1: आप सभी को प्रेम भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
2: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है, भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
1: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है, तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
2: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज सवाई माधोपुर का अपना

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

लौटने वाले खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

लौटने वाले खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

मांगने वाले खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

वाले खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

खाली ना लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

लौटने वाले खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

मांगने वाले खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

लौटने वाले खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा।

मांगने वाले खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

आने वाले खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

वाले खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

वाले खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

मांगने वाले खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

वाले खाली ना लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात

खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी

चले खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।